ओके जी, वेलकम बैक हर के लिए खुशामदीद। और हमारी जितने भी उर्दू सुनने वाले हैं, उर्दू स्पीकर हैं और वो हमारी प्रोग्राम खामोशी से सुनते हैं, तो उसके भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। और मैं उससे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी आया करें हमारे साथ एजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान में, अपनी प्यारी सी आवाज को, अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी आवाज को ये शायराना अंदाज में पेश करें। आए हमारे साथ इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान में, अपनी आवाज को प्रोग्राम का हिस्सा बना ले, अपनी आवाज को प्रोग्राम का हिस्सा इसलिए बनाए कि आप जो इतने खामोशी से हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो फिर आए एक दफा जरूर आए और हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत।

ओके जी नुकर टांग वाला तासुद इजना आई जेड एन ए अली फैसी सीरीज नुजरदा इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोडक्ट अगिसल गोळे दसान द पार रौल गोळे बिल्कुल जी दखपल कूर वाला द पार वर्स रखपल कूर वदानिला खपल माशुमान उला खपल खेंदुला खपल रुनुला और खास कर खपल जान द पार और ब्याच कम ने तासु खपल मोर प्लार द पार ये नि तासु के द वालिदैन द पार समंग बिल्कुल जी ऑयल रावले शी दागुई विख्त पे मसाज को लेशी दागुई पे लास पे तासु बिल्कुल मसाज को लेशी नो अगी ची दर द ब्या दा स्पेशल स्पेशल दुआ गानी की करा नो बस दागुई द खुली ने दुआ वतल और इंशाल्लाह इंशाल्लाह गस्ता सुपा हक की कबूली दिल नो इंतहाब की उस हुमनन जगह ची सहर वक्ती दे और चिकले प्रोग्राम खत्म शी लार शी और रावली खाम खास मुंग दिस ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान हर यो प्रोडक्ट चिकम सासु दे दूरशिल जरूरत थे और मंसूर जनरल स्टोर दुकान नंबर सलूरम पीजम सदाम मार्केट टांग जमंग डिस्ट्रीब्यूटर चिकम हाजी जरबत खान सेब दे तासु वर्तले ले शी जमंग दिस ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान टूल पटूले द प्रोडक्ट इंतहाब दी कोली शी इंशाल्लाह इंशाल्लाह खपुल डिस्काउंट बदर त मिलावेगी चिकले तासु वर्षी जरबत खान सेब सर मिलाओ शी दागुई सर की नहीं दागी सर रस्ता सु मुलाकात उसी और अगी तासु सर के लिए खबर स्टार्ट की और अगी तासु लक के लिए प्रोडक्ट दर की नुची तासु तक कम कीमत उआई तासु बो आई जो उस हाजी जरबत खान से तत दे वही लो जरूरत निश्ता जो मुंग सर डिस्काउंट होगा अगर बदर सर पुल खपल सर ने दूम डिस्काउंट करे भी फरीदुल्ला जनरल स्टोर बिलान मार्केट बनुरु टांग अल बदर मार्केट अफसरहान प्लाजा सदर प्लाजा डबरा बाजार असगर जनरल स्टोर मेन बाजार टांग सेहत होम यू मेडिकल अस्पताल नूर मार्केट टांग टांग सिटी वकास ट्रेडर्स दगजड़ा सब्जी मंडी टांग जहांजीब ट्रेडर्स उमर अडा टांग इब्राहिम सोलर एंड बिट्री सिस्टम निजदी सलीम मिस्त्री डबरा जियाउर रहमान कॉस्मेटिक स्टोर साबिर कॉस्मेटिक स्टोर शेख अवतार रोड डबरा नूर खान जनरल स्टोर पीर साहिब कादरी मार्केट डबरा रोहेल लेडीज शॉपिंग सेंटर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 2 पठानकोट गनी रखवान दुकानदार मंजी किली मुलाजिम परदेसी दुकानदार निजदी सुहेल मदरसा रनवाल किली टांग ताज उमर दुकानदार उर्फी काकी सर निजी किली सर निजदी गुमल इलाका आदि ने अलावा चिकम दे मतीउल्ला दुकानदार शेगढ़ आकी प्राइमरी स्कूल हाफिज अब्दुल रहीम मिस्त्री दुकानदार जूस बाजार मीरली की बता सलूलू शॉपिंग सेंटर मलक तारिक मार्केट स्ट्रीट नंबर ड्रीम और दुकान नंबर 1 के बता सो समुद इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान टोल पर टोला प्रोडक्ट मिलावी की नुता सुवर्त ले शे और अगे इंतहाब चिकम दे तासु दे जान द पारा बिल्कुल जी कवले शे अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام نن بخنه غوړم تاسو دوم رډیر زیات کول زړالل خو د پته مرګ ډراپ شي او چې کله کال ډراپ کیږي نو ټینشن ما لې ماته پته وا او مونږ ته پته لګی چې بیا دغه ته د نیټورک دغه ستونزه چلیږي ها

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: Your station.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पर एतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।
0: You are listening Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.

0: जी बिल्कुल मिनावालो चाउम फरमाइश कड़ा दे गाने और दलो उम्मीद दा गबा और दली अलगवान ने मागो तब लेकड़ा मुझदा कोशिश हुई चार छा फरमाइश ना मुझ पूरा को ता सोच कम काल न दिया दे प्रोग्राम बरखा गुरजम डेर गांड्स मेर तादाद बने काल न राजी मैसेज न राजी न बिल्कुल मुझरूम कला कला दे चा काल माजरा सरा अटेंड नसी या मुझा एक टाइम छे गाना प्ले कड़ी ता सो काल रवान भी नागे बने जम माजरत कम दे एस एम एस पर जरिए बांधे मैसेज पर जरिए बांधे चा दे खाकसार मोहम्मद रहमान खाकसार पावाज बने गाने और दिलो फरमाइश कड़ा और अजो दे मोहम्मद रहमान खाकसार पावाज बने दा गाना और ता सो बचे रे न जो मा सरा बवसो
1: जानता उरिजे पखविना आगा दे आम रोजगारों

0: हाँ बिल्कुल चौम दे कंदी कोची पावाज बने गाने और दोलो को फरमाइश कराओ माँ और तपुरा कराए बिल्कुल प्रोग्राम चे माँ सरा टेम हम ढेर ज्यादा कम का पाते दा गोरु चे दा काल पली की मुझ सरा कालर चोकते जी और दा कम जी नजी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी अस्सलाम वालेकुम आवाज मु ढेर कम राजी जी अस्सलाम वालेकुम जी जी हेलो वालेकुम सलाम लज मोबाइल तरनीज दो सयार आवाज डेर कम राजी हेलो
1: हेलो
0: जी जी और प्रोग्राम चर कले दरता वाई जी हाँ जी चाप आवाज बने बा गाने और दल गवाड़ी जी जी हेलो जी उरोर खबर कवा करना डेर किश्तानो किश्तानो उरोर खबर के शापारू का आवाज बांधे बिल्कुल आता गाने चिकम फरमाइश ताजा पूरा कौम जी सही
1: दा
0: ओके जी डेर मेहरबानी बिल्कुल बिल्कुल माँ पा ख्याल दे उरोर अवल वर्ती प्रोग्राम चिकाल कड़ा उदास सरा गाओ चि खबर बे वह खबर बे ओकड़ा बे ओपे गला बिल्कुल चिकलम कालो को गड़ सरा खबर कहो चिचम वेल गाड़ो बिल्कुल वेल सो یو بل کالر بجان سر شامل ہو بیا دواڑا فرمائشوں نہ پیو جی پر کو گورو چ مر سر دا کال پلے کے چوک تے جی او دا کم جی نادا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ہاں جی خورے پروگرام چر کلے درتا وایو الج تیز رتا ہوا چ زے وار وں
2: یمن کی تو نہیں چوک لے نہ چا ہاں
0: आवाज पता देने लगी खोर ताप आवाज से बिल्कुल न पाई रहा उम्मीद दचे कम रावर्दुन के आप उम्म न पाई शिता सुसे वेल गाड़ो जी हेलो जी जी वायु जी चावला सदालम मसूद बस ठीक था जिस ताज ताज़ा पर बाईश पर रखूँ हाँ बस ठीक तो सीधा लम मसूद पावाज बने था ताज़ा गाना प्ले करूँ जी सही था ओके जी डेर मेहरबानी देना अवल मुश्तायो और फरमाइश कराओ शाह फारूक आवाज़ बने बिल्कुल दे गाने और दुल्हन राजो दे शाह फारूक पावाज बने गाना और रूप ताज़ बचे रहना जो मासरा बोस

0: It's 1:30 p.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 तांकी नशिया, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
3: तासोरे रेडियो अमन 88.4 टांग रेडियो अमन जीत की लगन
4: Stop post ke da pakwali ehsas da the case and naturals richti

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pagam 97.4, Global FM 91, Dear Asmil Khan, and Radio Aman 88.4. Jinaab, teen radio station aur ek awaz, aur ye awaz hai Kesan Nashr Pakistan ki, ye awaz hai khubsurti ki, ye awaz hai sehat ki, aur ye awaz hai shifa ki. हर रोज की तरह जनाब आपकी खिदमत में हाजिर तीनों रेडियो स्टेशन ग्लोबल एफएम 91, रेडियो पैगाम और रेडियो अमन से बराह रास्त एक साथ बयक वक्त बराह रास्त दोपहर के 4 बज चुके हैं जनाब, और 4 बजते ही आप लोगों के कानों में ये आवाज गूंजती है जो कि आवाज है केसन की, जो आवाज है खलील धाबे शामान की। जी तो सामिन इकराम, कैसे हैं आप सभी लोग? जनाब उम्मीद यही करता हूँ कि जनाब बिल्कुल जी मेरी तरह बिल्कुल जी फिट एंड शाइन होंगे, चमकते हुए धमकते हुए, क्योंकि जनाब मौसम बहुत ही जबरदस्त है और ठंडा मीठा सा मौसम। जैसे कि आप लोगों को हमने 4 दिन पहले पेशन गोई की थी कि मंगल वाले दिन से मियां, हाँ जनाब मौसम जो है वो बहुत ही सुहाना होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो सुबह सुबह माशाल्लाह जो है बारिश हो गई, तो एकदम से जनाब बारिश जब आती है तो जनाब ऐसी की तैसी गर्मी की, हाँ जनाब बिल्कुल जी ऐसी की तैसी हो जाती है। और कौन सी गर्मी, कहाँ की गर्मी, किस खेत की मूली, हाँ जनाब बारिश आती जनाब मौसम सुहाना, और जब मौसम सुहाना होता है तो जनाब बंदा ऐसे ही एनर्जी के साथ बोलता है, अदरवाइज तो गर्मी तो इंसान को जो है जनाब गला दबा के रख देती है कि बंदे के जनाब क्या कहते हैं, बोलना तो दूर की बात, बंदा किसी को पास भी नहीं बैठने देता। तो जनाब ये सारा प्यारा मौसम आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि हमने आप लोगों के सामने पेशन गोई रखी थी, तो आपको बताएं कि जनाब आज से लेकर अगले 10 दिन यानी कि 21 से 31 जुलाई तक मौसम कैसा रहने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनाब गर्मी के मौसम के अंदर बाकी तो सर्दियां आ जाए तो कोई मौसम की सूरत हाल को पूछता ही नहीं है, है जनाब। जब गर्मी आती है तो लोग जो है वो पीछे पड़े होते हैं महकमा मौसमियात की कि भाई कोई चंगी खबर सुना दो सानू, है जी मौसम ठंडी हवा कब चलेगी, ठंडी हवा करण चलसी, बदल करण आसन थे, बारिश करण थी सी, तो महकमा मौसमियात वाले भी कहते हैं कि सारा दिन सारा साल तो हमें पूछते नहीं हो, है जनाब, और जाके इस गर्मियों में पूछते हो। तो भाई महकमा मौसमियात आप लोगों से कह रहा है कि ये जो जुलाई का आखिरी हफ्ता है, आखिरी अशरा, हफ्ता नहीं आखिरी अशरा, यानी कि आज से लेकर 31 जुलाई, ठीक है ना, ये जो आखिरी अशरा है इसमें मानसून मगरिबी हवाओं के जेर असर हमारा मुल्क आने वाला है जनाब, जिससे पूरे डिवीजन में जो है डेरस मलखान डिवीजन की हम बात कर रहे हैं कि 100 मिलीमीटर तक बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और बारिशों का ये सिलसिला जैसे कि अल सुबह आज से शुरू हो चुका है और जो वक्फे वक्फे से 31 जुलाई तक जारी रहेगा, अच्छी खबर है। तो इसके ऊपर तो आज बनता है कि दो चाय के प्याले पीने आपने, पिछले एक हफ्ते में जिस ने चाय नहीं पी है भाई, अब चाय को रेडी कर लें, ठीक है ना, अब साथ में इलायची भी मंगवा लें, 2-4 बिस्किट भी मंगवा लें, क्योंकि ये जो हफ्ता है ना, ये जो अशरा है 21 से 31, ये चाय वाला अशरा शुरू हो गया जरा। तो जनाब क्या कह रहे हैं कि इस सिलसिले के दौरान ये जो 10 अशरे का सिलसिला है जिला डेर इस्माइल खान, टांक, पहाड़पुर और वजीरिस्तान के अंदर जनाब गरज चमक और तेज हवाओं के साथ इन 10 दिनों के अंदर जो है मजीद 3 दफा मूसलाधार बारिश हो सकती है। जनाब यानी कि 4 से 3 स्पेल जो है आ सकते हैं इन 10 दिनों के अंदर, और तहसील दराबन, दराजिंदा, कोहे सुलमान के पहाड़ों पर और दामान के इलाकों में, जबकि टांक में जंडोला के पहाड़ों पर बारिशों के बायस रोधकोही जो है, हैं जी रोधकोही नाला जो है पानी की सतह बुलंद होगी, और इसके अलावा तेज बारिशों से टांक के जो नशेबी इलाके हैं जनाब, गरे शरे जितने भी हैं, ऊंचे हैं या नीचे हैं, नशेबी इलाके कौन से हो जाते हैं टांक वालों, हैं जी, तो भाई ये जेरे आब आ सकते हैं, ये हंसने की बात नहीं है, वैसे इसके लिए आपको इंतजाम करना चाहिए, ठीक है जनाब। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके इलाके नशेबी इलाकों में है, आपकी बस्तियां, तो भाई जंडोला के पहाड़ों के ऊपर बारिश होने वाली है,
ठीक है जनाब, और वो बारिश जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो आपके कच्चे मकान थे, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो हर तरफ से अपने इकदाम करने चाहिए। जैसे हम आपको कहते हैं कि गर्मी आ गई है तो हीट स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जनाब जो है बारिशें और तूफान का भी खदशा है। और आजकल जब तूफान का सुनते हैं तो कौन सी बात जहन के अंदर आती है जी? शमसियां शमसियां शमसियां बचा लो। हाँ जी, हर तरफ से शमसियां ही, सोलर प्लेटें प्लेटें पड़ी हैं। भाई कोई पूछे कि तुम्हें पाकिस्तान ने क्या दिया, तो सिंपल जवाब देना, ढेर सारी शमसियां।

जी जनाब, अभी तक तो हम आपको प्यारा बनाते रहे हैं आपकी शक्ल सूरत को लेकर, और आपको क्रीमें देकर, आप लोगों को साबुन शाबन देकर, आप लोगों को क्रीमें शरीमें और फेस वाश वगैरह देकर के ये चीजें इस्तेमाल करेंगे, खुद को गोरा चिट्टा करें, प्यारे हो, मिठे हो। लेकिन अभी हमने आपको सेहतमंद बनाने का सोचा है जनाब, क्योंकि सेहत है तो जिंदगी है, जान है तो जहान है, और अगर आपके पास जिस्म है और उसके अंदर जान नहीं है, खतरे की घंटी।

जनाब जिस्म है और जान नहीं है, और जान है तो जहान है जनाब। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट हम दे चुके हैं, बहुत ही प्यारा सा फेस वॉश आप लोगों को हमने दिया है जनाब, जिसको कहते हैं प्योर वाइटनिंग लवली फेस वॉश, और खवातीन का हक उनके पास, ठीक है जनाब। और फर्स्ट टाइम केसन वो कंपनी है जो आपको कह रही है कि भाई मर्दों वाले फेस वॉश से जरा पर्दा कीजिए, हैं जनाब, और औरतों वाला फेस वॉश घर में लाइए और इस्तेमाल कीजिए, फिर बताइए क्या वाकई ये ढोंस ये ड्रामा था केसन का, या वाकई ये जो फेस वॉश है ये तो वाकई खवातीन की स्किन के लिए है। ये कितना गोरा बनाता है, ये कितना पिंक ग्लो आपकी स्किन के ऊपर लेके आता है, और ये कितना आपकी स्किन को बेबी टच बनाता है। बिल्कुल जी, नर्म और मुलायम स्किन आपको मिलेगी, क्योंकि जनाब हमारे जो फेस वॉशेज हैं, स्पेशली ये जो फेस वॉश है, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है जिसने आपकी सिर्फ स्किन के ऊपर काम करना होता है। बहुत सारे अज्जा होते हैं ना, हर इंग्रेडिएंट का एक अलग से काम होता है, कोई आपको चमक दे रहा होता है, कोई आपको वाइटनिंग दे रहा होता है, कोई आपकी स्किन की क्लेंजिंग कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। केसन लवली फेस वॉश के अंदर एक एक ऐसा अनमोल इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के ऊपर काम करता है, ठीक है जनाब। क्यों हम आपको कहते हैं कि ये खवातीन के लिए स्पेशल फेस वॉश है, ठीक है जनाब। आप एक आम फेस वॉश बाजार से खरीदें, जिसे हम कहते हैं मर्दों वाला फेस वॉश, हैं जी, वो खरीदें और उससे चेहरा धोएं और अपने चेहरे को टच करें या किसी से टच करवाएं, ठीक है जनाब, और बताएं कि ये कितना सॉफ्ट है, फिर केसन लवली फेस वॉश से चेहरा धोएं, ठीक है जनाब। वो इंग्रेडिएंट पॉलीक्वार्टम 7 है जो ऐड करते हैं हम अपने इस फेस वॉश के अंदर, और वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत स्लिपरी एक कंडीशन बनाता है, ठीक है जनाब। आपकी स्किन को स्मूथ करता है, आपकी स्किन को नर्म और मुलायम करने में उसका बहुत बड़ा किरदार है। सो ऐसे हम नहीं कहते कि ये लड़कियों वाला फेस वॉश है, ये वुमन का स्पेशल फार्मूला है, तो इसके अंदर हमने कुछ ऐसा डाला है जो मर्दों के फेस वॉश में नहीं होता भाई।

जी जनाब, ये जो ट्रैक है आप सुन रहे हैं, ये तराना हमारा, हमारे न्यू प्रोडक्ट जो है, जो कि हमने आप लोगों के लिए एक डाइटरी सप्लीमेंट बनाया, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाया है, एक न्यूट्री सॉल्यूशन बनाया है, एक सफूफ, एक पाउडर आपके लिए हेल्थ के लिए बनाया है, जिसका नाम है केसन ताकत प्लस। ठीक है जनाब, और कितना अमेजिंग है जिस तरह हमारे फेस वाशों ने आपको प्यारा बनाया, जैसे हमारी क्रीमों ने आपको प्यारा बनाया, जैसे हमारी वेट कम पेट कम ने आपको स्लिम एंड स्मार्ट बनाया, जैसे हमारे शिफाए दर्द तेल ने आपकी जिंदगी से दर्दों को भगाया, बिल्कुल उसी तरीके से केसन का ताकत प्लस जो फार्मूला हमने लॉन्च किया है, आपके जिस्म के अंदर जान डालेगा, आपके कमजोर जिस्म को सेहतमंद बनाएगा, आपके जिस्म को फरबा करेगा और आपको दिखने में एक खूबसूरत इंसान बनाएगा। क्योंकि जनाब, जो लोग कमजोर होते हैं, पहले तो वजूहात क्या होती हैं, देखिए उस वक्त तक प्रोडक्ट नहीं बन सकती जब तक आपको पता ना हो कि इस बीमारी की वजह क्या है। जब कोई कंपनी, जिस कंपनी के माहिरीन इस चीज को ढूंढ लेते हैं कि भाई कोई बीमारी है तो उसके पीछे की वजूहात क्या है, उसी का पस मंजर क्या है, किस वजह से इस बेचारी लड़की का जिस्म भर नहीं रहा, कैसे इसके चेहरे के गाल पिचके हुए हैं, आखिर ऐसा क्या है, ये बेचारी खाना तो खा रही है लेकिन इसको खाना लग क्यों नहीं रहा।

0: जनाब, जिस्मानी कमजोरी और दुबला पतलापन, ये दो अलग चीजें हैं। और जिस्मानी कमजोरी जो है बेसिकली इसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं और कभी सोच रहे होते हैं कि मल्टीबियोंटा एक इंजेक्शन मिलता है, मल्टीविटामिन से भरपूर होता है। और मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि मैं 12 से 14 साल जो है मेडिसिन में गुजार कर आया हूँ, तो मुझे सब चीज़ों का बहुत बहुत बहुत अच्छे तरीके से पता है। और मैं जिस कंपनी में काम करता रहा हूँ वो नेचुरल प्रोडक्ट बनाती थी, नेचुरल चीज़ें, ठीक है जनाब। और उसकी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस वक्त, जो है केमिकल की दुनिया से लोग निकल रहे हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आपका भी माइंड ऐसा ही है कि बगैर साइड इफेक्ट के आप फ़ायदे हासिल करें, तो केसर नेचुरल पाकिस्तान के दामन थाम लीजिए और केसन के प्रोडक्ट्स को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। मुतमिन रहिए कि आपका बॉस, आपके इस कंपनी का ऑनर खलील ताबेशवान कभी भी आप तक मुजर केमिकल से बनी प्रोडक्ट आप तक नहीं आने देगा, और हमेशा कुदरत के ख़जानों से हम ख़जाने ढूंढ के आपकी तरफ लेकर आएंगे। और इस वक्त ये जो प्रोडक्ट हमने आपको दी है भाई, ये तो गुलदस्ता है कुदरत के ख़जानों का, कि जनाब वो ख़जाने जो आप चाहें भी तो नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग पंसारियों से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, बच्चों की सेहत के नशोनुमा के लिए मगज़ियात बनवाते हैं जनाब, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं जैसे कि बादाम वगैरह या इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये जो हम आपको फार्मूला, ये सप्लीमेंट हमने आपको बना कर दिया है, ये हर लिहाज से एक बहुत ही तनासब के साथ बना हुआ और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही पहुंचाएगा, कभी भी नुकसान का आप मत सोचिएगा। और इसकी पहली खुराक से ही आपको आपके जिस्म की जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। किसी किस्म का कोई स्टीराइड, किसी किस्म का कोई केमिकल हमारी इस ताकत प्लस फार्मूले के अंदर नहीं है, बिल्कुल 110% नेचुरल ये हमारा फार्मूला है जिसको हम कहते हैं केसन ताकत प्लस फार्मूला। और ये आज से अवेलेबल हो चुका है टांक में, पहाड़पुर में, डेरा इस्माइल खान में, तकरीबन कुछ दुकानों के ऊपर आज पहुंच चुका है। और सप्लाई चूंकि एकदम एक दिन में नहीं हो सकती, तो कुछ मशहूर दुकानें हैं जहां जहां पर हमारा ये फार्मूला पहुंच चुका है, ताकत प्लस फार्मूला, आप वहां से हासिल कर सकेंगे, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जानना ये ज़रूरी है कि आखिर ये कमज़ोरी होती क्यों है। जिस्मानी कमज़ोरी जब होती है तो बहुत ज़्यादा उसके बाद सुस्ती भी होती है, उसके बाद आपको थकन भी होती है, दुबले पतलेपन का शिकार हो जाते हैं, यानी कि वज़न की कमी होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, तिब्बी भी हो सकती हैं, गिज़ाई भी हो सकते हैं, तर्ज ज़िंदगी से आपकी जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। और इनके अंदर जो मशहूर, अगर मेरी थोड़ी सी बात आप सुन लेंगे, कॉल्स नहीं करेंगे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका फ़ायदा होगा, ठीक है जनाब, ताकि हमारी बात जो है मुतवाजन तरीके से आप तक पहुँच सके। कुछ लोग गैर मुतवाजन ग़िज़ा खाते हैं, उनकी खुराक जो है मुतवाजन नहीं होती है, और जिसकी वजह से दुबला पतलापन का जो है शिकार हो जाते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि कुछ खावत लड़कियां जो है शादी से पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, लेकिन शादी के बाद चूंकि वो एक दूसरे घर के अंदर शिफ्ट होती हैं, ठीक है जनाब, और उनका तर्ज ज़िंदगी जो है मुख्तलिफ होता है उस घर से जिस घर से वो आई होती है, अक्सर ऐसा देखा गया है। यानी कि अगर कोई लड़की किसी गरीब फैमिली से है तो उसकी चूंकि ग़िज़ा आलू गोश्त है, उनके घर के अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं आता, उन घर के अंदर गोश्त नहीं आता, फल फ्रूट खाने को मौका नहीं मिलता, दूध पीने को मौका नहीं मिलता है गुर्बत की वजह से, क्या कह सकते हैं आपके जनाब, सफ़ेद पोशी की वजह से। लेकिन अगर वही लड़की किसी अच्छे घर में चली जाती है ब्याह के, तो उनका तर्ज ज़िंदगी जो होता है ना वो उनके पिछली लाइफ से बहुत मुख्तलिफ होता है, ठीक है जनाब। उनके घर के अंदर जो है रूटीन से ड्राई फ्रूट्स का खाया जाना, या फिर हर रोज़ ताज़ा फलों का आना, ताज़ा फलों के मिल्क शेक का पीना, या फिर साथ में दूध का इस्तेमाल करना, या फिर अच्छी ग़िज़ाओं का, गोश्त का इस्तेमाल, मछली का इस्तेमाल, जो है बीफ का इस्तेमाल, पुलाव का इस्तेमाल, यानी कि अच्छी सेहत बख्श डिशेस का इस्तेमाल जैसे शुरू होता है, तो वही लड़की जिसकी जो है वज़न 42 किलो होता है, आप 4-5 महीने बाद देखते हैं कि उसका वज़न जो है वो 55 क्रॉस कर चुका होता है। वजह क्या होती है कि तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। वही लड़की जो इतनी कमज़ोर थी, मैंने खुद देखा है, ठीक है जनाब, बहुत सारी अपने फैमिली के दूर दराज के लोगों को, कि शादी के फौरन बाद जो है लड़की की फिजीक चेंज हो जाती है, ठीक है जनाब। उसमें बहुत सारे और भी अवामिल हो सकते हैं, ठीक है, आपके माइंड के अंदर भी कुछ आ रहे होंगे, लेकिन बेसिकली तर्ज जिंदगी का चेंज होना होता है कि एक फैमिली से वो निकलकर दूसरी फैमिली में चले जाती है। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है कि गैर मुतवाजन गिजा जब आप खाते हैं, जिसके अंदर तवाजन नहीं होता है। तवाजन का मतलब है कि उसके अंदर आप अगर आलू गोश्त डेली खा रहे हैं तो आपको प्रोटीन तो नहीं मिल रही है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं मिल रहे, आपको चिकनाई और फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से आपका जिस्म कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। फैट्स बहुत जरूरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, प्रोटीन्स जो होती हैं, ये आपके गिजा का हिस्सा हैं। ये गिजा में अगर आपको रूटीन में मिलती रहे तो आपका जिस्म फरबा रहता है, आपका जिस्म भरा भरा रहता है। लेकिन इन चीजों की जब कमी होती है सामीन कराम, तो फिर क्या होता है कि आपका जिस्म कमजोर होने लगता है।
1: केसन का ताकत प्लस, ताकत से भरपूर जिंदगी, कमजोरी को कर दो बाय बाय। केसन ताकत प्लस।
0: अच्छा, दूसरी बड़ी वजह जो होती है वो कैलोरीज की डेफिशिएंसी होती है, कि जितनी तवानाई जिस्म, यानी कि आप काम इतना करते हैं कि आप उतना खाते नहीं, ठीक है ना। ये बड़ी वजह होती है कि जब कैलोरीज की डिफिशियंसी आ जाती है, यानी कि आप जिस्म दिन भर में इससे कम, जितना आपका जिस्म एनर्जी इस्तेमाल करता है आप उतने कैलोरीज नहीं लेते, ठीक है जनाब। यानी कि आप काम जो करते हैं वो 100 कैलोरीज का करते हैं। मैंने आपको एक वेट कम पेट कम में बताया था कि एक रोटी के अंदर कितने कैलोरीज होती हैं, एक जो है प्लेट चावल के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं, मछली के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है जनाब, एक मिल्क शेक के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं, आपको वो हमारा लेक्चर याद होगा। तो आपको डेली कितनी चाहिए होती है, लेट्स सपोज आपको जनाब 400 कैलोरीज चाहिए, लेकिन आपका जिस्म जो है 460 के करीब कैलोरीज को बर्न करके तवानाई पैदा कर रहा है, तो डेफिसिट में आ गया, ठीक है। ये तो आपने उतना खाया नहीं है जितना आपके जिस्म ने कैलोरीज को इस्तेमाल कर रहा है, और जब कैलोरीज को इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो आपका जिस्म कमजोर, आपकी बॉडी जो होती है वो आपके जिस्म को खाने लगती है। कैलोरीज की डेफिशिएंसी, गैर मुतवाजन गिजा और भूख का ना लगना, ये कल मैंने आपको शो में बताया था, कल डेरा के लोग नहीं सुन पाए थे। ये हमारी नई प्रोडक्ट आई है केसन ताकत प्लस, और ये आपने कब लेनी है थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कब इस इस्तेमाल का तरीका कार क्या है। भूख ना लगना, अच्छा ये जो हमारी ताकत प्लस फार्मूला, ये बहुत ही ताकतवर फार्मूला है। इसके अंदर बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, ये सब फैटी एसिड्स हैं, ठीक है जनाब। ये फैट्स वाली चीजें हैं, यानी कि चिकनाई पैदा करने वाली चीजें, बहुत सारे लोगों का दिल भर भी सकता है। यानी कि आप जब, इसलिए मैं आपसे कल कह रहा था कि इसको इस्तेमाल का तरीका कार ये है, अगर आप ये समझते हैं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों ने इस्तेमाल करनी है। एक ताकतवर बंदा इसके 3 चम्मच भी दूध के अंदर डालकर पी ले ना, उसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एक सेहतमंद बंदा जो है अगर 1 गिलास के अंदर 3 चम्मच ताकत प्लस के डालकर मिक्स करके पी ले, उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये प्रोडक्ट कमजोर लोगों के लिए है, तो उनका मैदा भी कमजोर होता है, ठीक है ना। अगर उनका मैदा सेट ना हो तो वो सेहतमंद ना हो, अगर उनका मैदा सही काम करता हो, हाजमा ठीक हो, तो वो फिर दुबले पतले कैसे हो गए। सबसे बड़ा मसला जो है वो हाजमे का मसला होता है। कल मैंने आपको बताया था, डेरा के लोग कल प्रोग्राम नहीं सुन पाए थे, कि ये हमारी जो प्रोडक्ट है 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। ताकत प्लस जो फार्मूला है ये 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अंदर टोटल 13 अज्जा मौजूद हैं, ठीक है जनाब। ताकत प्लस जो फार्मूला है इसके अंदर 13 अज्जा मौजूद हैं। इसके पहला हिस्सा जो है मगजियात के ऊपर है, यानी कि ये ताकत देने वाले जो फैट्स हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम, ये चीजें, एक हिस्सा इसके ऊपर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा इसका जो है जड़ी बूटियों के ऊपर मुश्तमिल है, जैसे कि अश्वगंधा है, जैसे कि सफेद मूसली है, इंडियन मूसली है, ठीक है जनाब। और इसके साथ साथ जो है स्थावर है, ये 4 किस्म की जड़ी बूटियां, जो कि बहुत ही नायाब जड़ी बूटियां हैं, जो ताकत का खजाना है, और ये जब मगजियात के साथ मिलेंगी तो आपके जिस्म को जवान कर देंगी एकदम से। ये जब मगजियात आप बाजार से बादाम लें या पिस्ता बादाम खा लें जनाब, आपको ताकत वाली चीजें खा रहे हैं, लेकिन वो एक मुतवाजन नहीं होते। हम आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे रहे हैं माहिरीन की जेर निगरानी, और इसको हमने 4 महीने ट्राई किया है। मुख्तलिफ लोगों को हमने इसके सैंपल दिए, लोगों ने इस्तेमाल किया, और आज वही लोग पैसे लेके ठहरे हुए हैं। यकीन कीजिए, वही लोग आप पैसे लेके ठहरे हुए हैं कि भाई इसका हमें कमर्शियल पैक दे दे, वो तो खत्म हो गया, इसने तो हमारे जान डाल दिया, ये तो हमारे जिस्म इसने भर दिया, हमारी गालें भर गई हैं, हमारी गर्दन भर गई, जिस्म भर गया। अब वही लोग जिनको हमने ट्रायल के लिए मुफ्त में ये पिलाया था कि आप पीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और उस वक्त ये बेजायका था, ठीक है ना, जो हमने सैंपल दिए थे ना वो कोई जायका नहीं था उसमें, ठीक है ना। इसके अंदर फ्लेवर शामिल है, वनीला फ्लेवर के अंदर है, ओ माय गॉड, मजा आ जाता है कसम से पीते हुए। वनीला फ्लेवर है इसका और इसके अंदर शुगर भी ऐड है, ठीक है, बहुत ही लाइट सी है लेकिन बहुत मजा करते हैं। गिलास एक पियेंगे तो मजा आ जाता है, जान आ जाती है जिसम में। आप एक गिलास 300 के ऊपर मुश्तमिल है। मैदे की बात कर रहा था ना कि हाजमा ठीक हो तो कोई कमजोरी ना हो, ये सबसे बड़ी वजह जो है हाजमे की कमजोरी होती है कि आपको भूख नहीं लगती है, आपके जिस्म सही तरीके से हजम नहीं कर पाता है और वही खुराक इस्तेमाल नहीं हो पाती है जिसकी वजह से आप कमजोर होते जाते हैं। तो ये जो ताकत प्लस हमारा फार्मूला है ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर वन मगजियात इसके अंदर है, ठीक है ना, जिनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। दूसरा हिस्सा जड़ी बूटियां हैं जो ताकत देने वाली हैं, जैसे मैंने नाम आपको गिनवाया, अश्वगंधा, ठीक है जनाब, इंडियन क्या कहते हैं उसको, सफेद मूसली एंड उसके साथ सतावर, ये तीन ये पावर बैंक है। ये तीन जड़ी बूटियां किसी हकीम को बोलेंगे भाई मैं वो चीज खा रही हूँ जिसके अंदर ये तीन चीजें हैं, वो बोलेंगे ये किसने तुम्हें कीमती खजाना दे दिया, ये किसने अपने हाथ काट कर तुम्हें दे दिया, ये क्या चीज दे दी आपको, ये इतनी ताकतवर जड़ी बूटियां। इसका जो तीसरा हिस्सा है वो है जनाब आपके मैदे को ठीक करने वाला, ठीक है जनाब। इसके अंदर जो डिफरेंट अज्जा शामिल किए गए, जैसे इसके अंदर इलायची है जो हमारे हाजमा कंट्रोल सिरप के अंदर भी है, इलायची वो उसकी खुशबू है। अच्छा जी, ये जब वनीला और इलायची की खुशबू आपस में मिलती है ना, ओए क्या क्या क्या, क्या मिल्क शेक बनेगा, यकीन कीजिए मजा आ जाएगा आपको, इतनी प्यारा कॉम्प्लेक्स है। जब वनीला फ्लेवर और ये इलायची की खुशबू आपस में मिलती है, आ हा बहुत मजा आ जाता है, आप पियेंगे आपको मजा आएगा एकदम से, ठीक है जनाब। इलायची इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर सौंफ को भी शामिल किया गया है, ठीक है जनाब, जीरे को भी ऐड किया गया है, यानी कि वो तमाम चीजें जो आपको भूख भी लगाएं, आपके हाजमे को भी ठीक रखें, आपको ताकत भी पहुंचाए। तो ये वजह जो होती है बहुत सारे लोगों में कमजोरी की, ये वजह होती है कि उनका मैदा सही काम नहीं करता, उनको भूख नहीं लगती है, तो ये वाली प्रोडक्ट हमारी आपको भूख भी लगवाएगी। लेकिन अगर आपका मैदा कहीं कमजोर है और भूख नहीं लग रही तो फिर आपने हाजमा कंट्रोल सिर्फ साथ में जरूर लेना है, ठीक है ना। वो हमारी एक क्लाइंट है, कस्टमर है ना, दानिया सुन रही होंगी, तो उनको यही मैंने फार्मूला दिया था, मैंने कहा ये आप साथ में इस्तेमाल करें, ठीक है, अगर आपको भूख नहीं लगती, पहली तो बात है कि ताकत प्लस से आपको भूख लगेगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं लगती तो फिर आपने हाजमा कंट्रोल सिर्फ साथ में इस्तेमाल करना है इसी ताकत प्लस के साथ, ताकि ये ताकत दे और वो भूख लगा के आपकी और कमजोरी को दूर करे। अच्छा ठीक है जनाब, भूख का मसला भी हल हो गया। अब इसके बाद और कौन सा मसला होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो गजाइत को बाज़ अवकात निज़ाम हाजमा के अमराज जैसे कि मैदे की सोजिश हो, आंतों के मसाइल हों, IBS, ठीक है जनाब, जिनकी वजह से खुराक हजम होकर खून में शामिल नहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है, ठीक है जनाब। बाज़ अवकात जो है लोग खाते हैं उनको जिस्म को नहीं लगता, वजह क्या होती है, ठीक है जनाब। थोड़ी सी बात मेरी लंबी हो रही है लेकिन बहुत काम की बातें हैं भाई, ये बातें जो है आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी, जो हमारे माहिरीन आपके सामने वो बातें रखते हैं जो बहुत ही नॉलेजफुल होती हैं। बाज अफराद का मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है, ठीक है जनाब, बाज लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि वो जो भी खाते हैं जिस्म उसे बहुत तेजी से जला देता है, ठीक है जनाब। ये नहीं कि आपकी खुराक को आपका मेटाबॉलिज्म जला देता है, वो आपके जिस्म में इस्तेमाल ही नहीं हो पाती, ठीक है जनाब, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है आपकी बॉडी के अंदर। दूसरा, वो जो लोग कहते हैं कि भी खाते तो हैं लगता क्यों नहीं है, तो उनके अंदर क्या मसला होता है कि उनके निजामे हाजमा के अमराज के जैसे कि मैदे की सोजिश, अगर उनके मैदे के अंदर सोजिश है, आंतों के मसाइल हैं, IBS, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक बीमारी होती है, ठीक है जनाब, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको बोलते हैं, IBS होते हैं, जिनकी वजह से खुराक हजम होकर खून में शामिल नहीं हो पाती, ठीक है जनाब। तो ये बहुत बड़ा मसला होता है कि आपको खुराक नहीं लगती है, ठीक है जनाब। दायमी बीमारियां बाजू का जैसे कि शुगर, जबतीस, उजलाती, असाबी कमजोरी, तपेदिक, जिगर, गुर्दे के अमराज, ये भी कमजोरी पैदा करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। खून की कमी आप में होती है तब भी जिस्म कमजोर रह जाता है, जिस्म में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से खुलियात तक ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंचती है, जिससे दायमी कमजोरी और सुस्ती रहती है, ये वो बीमारियां हैं जो आपके जिस्म से निकाल कर हम आपको बता रहे हैं कि why this cholera, क्यों आपका जिस्म मोटा नहीं हो रहा है, क्यों आपका जिस्म सेहतमंद नहीं हो रहा है, आपके जिस्म के अंदर आखिर चल क्या रहा है। रोटियां तो दो भी आप भी खा रहे हैं लेकिन घर के अंदर सारे सेहतमंद हैं, आप बेचारे क्यों कमजोर रह गए हैं। तो ये वजूहत होती है, हार्मोनल तब्दीलियां होती है बातों का।

जी जनाब, थायराइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जरूरत से ज्यादा जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो जिसकी वजह से वजन तेजी से गिरता है और कमजोरी भी महसूस होती है। ये हार्मोनल तब्दीलियां होती हैं थायराइड ग्लैंड्स जो आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जनाब, वो जब हद से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो वो आपको कमजोरी की तरफ लेके जाते हैं। तो जनाब, दायमी तनासब और आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, डिप्रेशन है, भूख को मुतासर करती हैं ये चीज़ें, और जिस्मानी तवनाई को तेजी से ख़त्म करती हैं। ये मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन, दायमी डिप्रेशन जो है, स्ट्रेस और एंजाइटी जो होती है, ये भूख को मुतासर करते हैं और जिस्मानी तवनाई को तेजी से ख़त्म कर देते हैं। इसका असर आपके बॉडी के ऊपर आता है, आपकी तवनाई को जला देती है। टेंशन, डिप्रेशन, ये चीजें जो है वो आप जो तवनाई हासिल कर रहे होते हैं खाने पीने की चीजों से, उनको खत्म कर देती है। नींद की कमी भी बहुत बड़ी वजह है, और नशावर अशिया अद्वियात का इस्तेमाल ये भी है। लेकिन बहुत सारी चीजें आपने, लोगों ने जानी कि खुराक का खाना और फिर भी आपके जिस्म को ना लगना, आप लोगों को हमने एक सलूशन दे दिया है। और जिस तरह केसन का आपके ऊपर एतमाद, आज 10 बजे एक दुकानदार की मुझे कॉल आई, जनाब कहाँ से भाई, केसन को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इलाके के लोग कौन से हैं जिनका केसन, मैं कहता हूँ कि केसन जो है उनका पहला और आखिरी इश्क है उस इलाके का। हमें प्रोडक्ट की सेल से पता चलता है, कोई हमें कॉलिंग करके नहीं बताता। हमें जितना दुकानदार परेशान करते हैं कॉलिंग कर करके ना, तो हमें समझ जाता है कि ये जो गिरोह है, ये जो इलाका है ना, केसन का दीवाना है, और वो है रंगपुर का इलाका। जब भी हम कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सबसे पहले हमें जो कॉलें आती हैं वो रंगपुर अड्डे से आते हैं, हसीब जनरल स्टोर से, जमील नियाजी से, हैदर मेडिकल स्टोर से। भाई किधर है नई प्रोडक्ट? हम कहते हैं भाई अभी हमने जिक्र किया है। कहते हैं यार जिक्र क्यों करते हो जब भेजते नहीं हो? यानी कि वो इतने दीवाने हैं कि ब्लाइंडली बैठे होते हैं कि केसन प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और हम आंखें बंद करके खरीदेंगे।

जी जना, वहां से कॉल आई मुझे हैदर मेडिकल स्टोर से कि भाई सुबह से कोई 10 बंदे आ चुके हैं यार, क्यों बताते हो पहले जब भेजते नहीं हो प्रोडक्ट। तो मैंने कहा भाई बस थोड़ा सा टाइम ले लो, इंशाल्लाह 2 बजे आपको ये ताकत प्लस मिल जाएगी। तो भेज दी हमने, अभी जो है लोग खरीद सकते हैं भाई, पहुंच चुकी होगी ये हमारी प्रोडक्ट ताकत प्लस। लेकिन मान गए रंगपुर वालों, आप लोगों को यकीन करें, आपके ट्रस्ट को, आपकी मोहब्बत को मैं मान गया कि सुबह ही सुबह मैंने सिर्फ बताया था कि कल इस प्रोडक्ट का जिक्र हुआ है और आज धड़ाधड़ लोग वहां पर पहुंच गया। और हैदर मुझे कहता है 10वां बंदा जा रहा है सुबह से, 10वां बंदा जा रहा है कि जिसको हमने ये नहीं दिया, और वो कह केसन की ताकत प्लस, ताकत प्लस दो केसन ने जो नई फक्की, ये लफ्ज याद के मैंने कहा मैं जितना बचाता हूँ अपने प्रोडक्ट को भी उसको उसी का नाम पड़ जाता है। तो वो जनाब कहता है कि वो यार ताकत वाली फक्की है जी। मैंने कहा तुम लोग अपनी तरफ से नाम बनाना, केसन का नाम याद ना करना ताकत प्लस, ठीक है। तो कह रहे थे नहीं ऐसा ऐसा याद हो जाएगा ना, लोग नए अभी अभी सुन रहे हैं। सो भाई रंगपुर वालों को बेहद शुक्रिया, बहुत मोहब्बत करते हैं यार आप केसन के साथ, मान गए। काश ऐसी मोहब्बत टांक वालों के अंदर भी आ जाए। कौन सा दम करना पड़ेगा टांक वालों पर यार?

0: जी तो जनाब, प्रोडक्ट हमने आप लोगों के लिए बना दी है और हमें 4 से 5 महीने लगे हैं इस प्रोडक्ट की तैयारी में। 3 महीने तो हमें लग गए, 2 महीने लग गए बनाने में, 3 महीने टेस्ट करने में लग गए और अब 5वें महीने में हमने आपको ये चीज दे दी है। तो भाई जल्दी से जाएं खरीदें। इस्तेमाल का तरीका क्या है इसका? नीम गरम पानी ले लें या नीम गरम ना भी, पानी नहीं दूध के साथ आप इसको ले लें। ठीक है, ये बताते हैं आपको। कॉलर है हमारे साथ एक, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, आवाज नहीं आता
0: जी? आ गई जनाब आवाज, आ गई सही, आ गई सही। कौन
1: इंसान? मोहम्मद अली बलोच गरा बुढ़ा
0: जी, गरा बुढ़ा कोल मोहम्मद अली बलोच, बलोच भरा
1: की मशे सिंगे बराबर जुड़ी
0: सड़े मशे मासरा डेरा सेहत मंदुना दी है जी। बहुत शुक्रिया, आप हमारी प्रोडक्ट के लिए दुआ गो है। और अली भाई
1: और
0: समझ आंदी है ना? हाँ समझ आंदी पे इन लग वैसु स्टडी माशी अली ब्रदर स्टडी माशी
1: माशी
0: अब खैर आगले
1: अब खैर आगले।

0: अली भाई, अली भाई, अली भाई, पहाड़पुर में 5 साल से चल रही है, ठीक है?
1: बिल्कुल, पहाड़पुर में हमने काम किया है ना, गली वाला।
0: हाँ हाँ,
1: मैं मजदूरी करता हूँ, ईंट वाला मजदूरी करता हूँ।
0: ठीक है जी।
1: पहाड़पुर में गया तो उधर काम किया ना, उधर एक आदमी ने बताया, ये वो यूनस नाम था उसका।
0: अच्छा जी।
1: वहाँ पे तुम्हारा पहला पहला प्रोडक्ट वाला उधर चलते था।
0: हाँ ठीक है।
1: फिर उधर मैंने खरीदे गोंडों के लिए,
0: ये दर्द वाला तेल,
1: दर्द वाला तेल,
0: केसन शिफाए दर्द तेल है जी।
1: हाँ जी जी। अभी तो इधर मैं नंबर नहीं मिलता था, नंबर मैं मांग रहा था किससे, सलीम से मिला।
0: सलीम कटिकेल भाई से, कटिकेल से
1: जी, उससे मिला। बिल्कुल, मैंने उससे कहा यार खलील भाई का प्रोडक्ट मैंने लिया है पहले एक बार, वो बहुत टाइम हो गया उसका, 4 या 3 साल हो गए।
0: तो वो गोड्डों वाला जो तेल है वो फिर आपके गोड्डे ठीक हुए कि नहीं हुए, पहले ये बताओ।
1: नहीं नहीं उधर सेट हो गया।
0: हाय जी, कैसे जादू है ना उसके अंदर।
1: काम पे सेट हो गया, लेकिन इधर आ गया इधर तो पहाड़ लगे गए, पहाड़ों में काम किया हमने।
0: हाँ, बस उसको अपने घर में रखें और कभी कभी उसकी मालिश करते रहा करें, आप फिट रहेंगे इंशाल्लाह। अली भाई
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह खलील भाई, ओके, खुदा हाफिज़। सारे को दुआ सलाम दे रहे, सुन ले पाए ना सारे प्रोग्राम,
0: सारे को दुआ सलाम हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, इसको इस्तेमाल का तरीका जो है वो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, इस्तेमाल का तरीका जो है इसका ताकत प्लस का क्या है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो कमजोर लोग होते हैं उनका मैदा भी कमजोर रहता है, तो स्टार्ट आपने ये करना है कि आपने आधा जो गिलास दूध का होता है, आधा गिलास दूध का, ठीक है जनाब, उसको नीम गर्म कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो कोई इश्यू नहीं है, ये फौरन हल हो जाता है, ठीक है। सर्दी के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन गर्मी के अंदर नहीं होता, ठीक है जनाब। तो आपने फिलहाल आधा गिलास दूध और 1 चम्मच से शुरू करना है, पहले 1-2 दिन इसी तरीके से लें, रात को सोते वक्त लें, बहुत अच्छा है, इससे नींद बहुत प्यारी आएगी आपको। ये आपका जो स्ट्रेस सिस्टम है, जो जहनी निज़ाम है, उसको भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके करेगा। इसके अंदर 13 चीज़ें हैं और बड़े कमालात हैं इसके। इसके आपने जब सेहत प्लस ले लिया, ताकत प्लस, तो आप 1 डब्बी इस्तेमाल करके देखिए, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, हर दिन खुशी से भरपूर होगी, ना ही थकावट होगी, ना ही सुस्ती होगी, ना ही कमजोरी होगी, भाग भाग के काम करने को दिल करेगा, चक्करों वाला सीन ही खत्म हो जाएगा, कभी इधर चक्कर चक्कर आके गिरी पड़ी है, कभी उधर, कभी किचन में खड़ नहीं सकती, कभी काम नहीं, कभी सारी बात नहीं, आप माजी का हिस्सा बनेंगी, ये माजी का हिस्सा बनेगी, ये सारी जितनी बातें हैं, सुस्ती, कमजोरी, काली नकात, ये सब खुद खत्म होगा। और इंशाल्लाह केसन का जो ताकत प्लस फार्मूला है, जो सप्लीमेंट है इंशाल्लाह, ये आपके जिस्म के

अच्छा जी, ताकत प्लस को आप दो दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। जिनको बहुत कमजोरी है, जिनको यानी कि जिस्म को सेहतमंद करना है, दुबले पतले जिस्म को अगर आपने सेहतमंद करना है तो आपको डेली 2 चम्मच जरूरी हैं, एक सुबह नाश्ते से पहले, ठीक है जनाब, और एक रात को सोते वक्त। लेकिन अगर अमूमी आपको मजमूई तौर पर कमजोरी महसूस होती है, कामकाज में थकावट होती है, सुस्ती होती है, काहली नकाहत, तो उसके लिए आप 1 चम्मच डेली, ठीक है जनाब, 1 चम्मच डेली, या आप अपनी इस्तेदात के मुताबिक, क्योंकि ये महंगी चीज है, 500 रुपए का एक जार है, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हैं। अभी हमने ये छोटा पैक बनाया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका बड़ा पैक लॉन्च करेंगे और उसमें आपको बचत जरूर देंगे, ठीक है जनाब। जिस तरीके से वेट कम पेट कम का छोटा पैक और बड़े पैक में फर्क है, जिस तरह ऑयल के अंदर छोटे पैक और बड़े पैक में हम आपको 150-200 रुपए की बचत देते हैं, तो इसी तरीके से बड़े पैक के अंदर भी आप लोगों को हम बचत देंगे। लेकिन इनिशियली इस वक्त जो है वो जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जनाब, वो क्या है, वो है जनाब छोटा पैक, ताकि आप इसको टेस्ट कर लें, ठीक है जनाब। इसको इस दूध के अंदर ही आपने इसको इस्तेमाल करना है, दूध के अंदर इस्तेमाल करेंगे और जो है इंशाल्लाह आपको ढेर सारा फायदा हो गया। मैंने आपको चूंकि इसकी डोज समझानी थी, 12 साल से ऊपर के बच्चे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे छोटे बच्चों को नहाते हैं, चूंकि ये उमूमी तौर पर जिस्मानी कमजोरी के लिए है, ठीक है जनाब। तो 12 साल से ऊपर

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 मेगाहर्ट्ज़
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 मेगाहर्ट्ज़।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: रेडियो अमन 88.4 टांग, रेडियो अमन जीत की लगन।

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मुअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।
3: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल ले। अवेला जी सुनत अमल ले।
4: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जी दली कड़ी दली यो। डेर गर्जी दली कड़ी दली यो।
3: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ, मायूसके गई माँ। अलशिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
4: और दोनों मालूमातों दे पारा पदग नंबर कॉल कवले शे
3: 0319-55-23-404।

0: Radio Aman Network, News and Information Station. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर, कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर, बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश, रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।

जान हाजिर है, जान हाजिर है मुनव्वर। जान हाजिर है मुनव्वर, जू तो काबिल समझे। जान जान हाजिर है मुनव्वर, जू तो काबिल समझे। जब जरूरत हो तो हल्का सा इशारा करना। जान हाजिर है मुनव्वर, जू तो काबिल समझे। जब जरूरत हो तो हल्का सा इशारा करना। जान हाजिर है मुनव्वर, जब तू काबिल समझे। जब जरूरत हो तो हल्का सा इशारा करना।

0: اوكي زي ار دين الله يبلغ غزل دي راس عليك شلي خزل لي خزل دين مزيد على غزل دي زي वो सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था वो सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था
1: मस्त करे दस्तर
0: ओपल बरक के ओपल बरक जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था वो सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था ओपल बरक जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था कमाई जिंदगी भर की उसके नाम का तो कर दे कमाई जिंदगी भर की उसी के नाम तो कर दे मुझे कुछ और करना था मुझे कुछ और कहना था कमाई जिंदगी भर की उसी के नाम तो कर दे मुझे कुछ और कहना था मुझे कुछ और कहना था मुझे कुछ और कहना था कहा उसने सुनी मेरी सुनी भी अनसुनी कर दी कहा उसने सुनी मेरी सुनी भी अनसुनी कर दी उसे मालूम था इतना मुझे कुछ और कहना था उसे मालूम था मुझे कुछ और कहना था कहा उसने सुनी मेरी सुनी भी अनसुनी कर दी उसे मालूम था इतना मुझे कुछ और कहना था मेरे दिल में जो डर आया तो ये मुझ में भी डर आया मेरे दिल में जो डर आया तो ये मुझ में भी डर आया वह एक रब्ता टूटा मुझे कुछ और कहना था मेरे दिल में जो डर आया ये मुझ में भी डर आया वह एक रब्ता टूटा मुझे कुछ और कहना था